0: You were listening to a special program presented by the students of the Sri Satya Sai Primary School in the Divine Presence on 28th March 2004.
1: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
0: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Maru mahalla pehla, son kalaya pramparthari, aap niralam apriyapari, aape kudrat kar kar dekhai, sunno sunyo paayenda, paun paani sunne te saje, srishtyo paaye kaya gadraje, agn paani jiyo jyot tumari, sunne kala rahayenda, सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए सुनने वरते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिए परम चुकाएंदा सुनो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सतसर मनुआ गुरमुख नावे फिर बाहुड़ जो न पाएंदा सुनो चंद सूरज गहनारे तिसकी जोत तिरपमन सारे सुनने अल

आपे बख्शल है सुख पाए सद ही नाम निवासी है। एहो तन धरती शब्द बीजया पारा हर साचे सेती वणज वापारा सच तन जमया तोट ना आवै अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगण आरे नो गुण की जय आपे बख्शल है नाम दी जय गुरमुख होवै सो पत पाए इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ ना होई गुर प्रसादी बूझै कोई गुरमुख होवै सो तन पाए सदी नाम निवासी है। अनलवाओ परम कुलाई माया मोहे सोधना काई मनमुख अंधे किशु ना सूझै गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हों मैं माया सूते अपना कर ना संभालै अंत विगूते पर निंदा करै बहु चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रते मन निर्मल नामे नाम सवारी है। मारू महला तीजा एको सेवी सदा थिर साचा दूजे लागा सब जग काचा गुरमती सदा सच सालाही साचे ही सच पति जय है। तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता आपे लाए लय जग जीवन दाता आपे बख्शे दे वड़ियाई गुरमत इहो मन भीजै हे माया लहर शब्द निवारी इहो मन निर्मल हों मैं मारी सहजे गुण गा वै रंगराता रसना राम रवीजै हे। मेरी मेरी करत विहानी मनमुख ना बूझै फिर इयाणी जम काल घड़ी मुहत निहाले अंदन आरजा शीजै हे। अंतर लोभ करै नहीं बूझै श्री उपर जमकाल ना सूझै ऐथे कमाणा सो अगे आया अंत काल क्या कीजै हे। जो सच लागे तन साची सोए दूजै लागे मनमुख रोए दुहां सिरिया का खसम है आपे आपे गुण मैं भीजै हे। गुर कै शब्द सदा जन सो है नाम रसायण इहो मन मोह है। माया मोह मैल पतंग ना लागै गुरमती हर नाम भीजै हे। सबना विच वरतै इक सोई गुर प्रसादी प्रगट होई हम मैं मार उसदा सुख पाया नाए साचै अमृत भीजै हे। किल बिख दुख निवारण हारा गुरमुख सेव्या शब्द विचारा सब किछे आपे आप वरतै गुरमुखो तन मन भीजै हे। माया अग्न जलै संसारे गुरमुख निवारै शब्द विचारे अंतर सांत सदा सुख पाया गुरमती नाम लीजै हे। इंद्र इंद्रासन बैठे जमका पौ पावै जम ना छोड़ै बहु कर्म कमावै सतगुर भेटै ता मुक्त पाईऐ हर हर रसना पीजै हे। मनमुख अंतर भगत ना होई गुरमुख भगत सांत सुख होई पवित्र पावन सदा है बाणी गुरमत अंतर पीजै हे। ब्रह्मा विश्रम हेस विचारी त्रै गुण बद्धक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अंध नाम रवीजै हे। वेद पढ़ै हर नाम ना बूझै माया कारण पड़ पड़ लूजै अंतर मैल अज्ञानी अंधा क्यों कर दुत्तर तरीजै हे। वेद बाद सब आख वखाणै ना अंतर पीजै ना शब्द पछाणै पुन पाप सब वेद रड़ाया गुरमुख अमृत पीजै हे। आपे साचा एको सोई तिसमें दूजा अवर ना कोई नानक नाम रते मन साचा सचो सच रवीजै हे। मारू महला तीजा सच्चे सच्चा तख्त रचाया निज कर वसिया तिथै मोह ना माया सद ही साच वसिया घट अंतर गुरम करनी सारी है। सच्चा सौदा सच वापारा ना तिथै भरम ना दूजा पसारा सच्चा तन खटिया कदे तोट न आवै बूझै को विचारी है। सच्चै लाए से जन लागे अंतर शब्द मस्तक वट भागे सच्चै शब्द सदा गुण गावै शब्द रते विचारी है।
ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸਾਲਾਹੀ, ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਗੁਰਮਤ ਉੱਚੋ ਉੱਚੀ ਪੌੜੀ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਮੈ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਾਂ ਤੁਦ ਪਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਭ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ, ਹਮੈ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਆਪੇ ਕੀਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨਹੀ ਚੀਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਈ, ਹਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈ। ਗੁਰਮਤ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ, ਹਮੈ ਮਾਰਨ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਭਾਵੈ, ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਸੁਹਾਵੈ। ਐਥੈ ਸਾਚੇ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਜੋ ਦੂਜੈ ਲਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਜਾਪੈ ਨਾਹੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਨੀ ਕਮਾਇਆ। ਸੱਚੋ ਸੇਵੈ ਸੱਚ ਧਿਆਵੈ, ਸੱਚ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੀ, ਅੰਦਨ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਧੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤਿਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੇ ਜਨ ਸੁਖੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਪਾਣੇ ਆ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਜਨ ਉਭਰੇ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਕੁਟੰਬ ਨਾ ਤਿਸ ਮਾਤਾ। ਏਕੋ ਏਕ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਧਾਰੀ ਹੈ। ਹਮੈ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਛ ਨਾ ਚੱਲੈ ਤੁਰ ਖਸਮ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਤੇ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ, ਸਾਚੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਬਦੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਅੰਤਰ ਸਾਚਾ ਮੰਤਨ ਸਾਚਾ, ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਵੇਖੈ

बिन नावें डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरा सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित्र श्रीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरा सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड़ियाई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख को जाता है, जिसनों नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है, आपे हीरा रतन आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तोले तोलो, जी जंत सब सरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है, जिसनो नदर होवै तुर तेरी, मरै न जम्मै चूकै फेरी, साचे गुण गावै दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाणे से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुन वरतै संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवै सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घणा दुख आगे, मनमुख भरम भुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुणे अवगुण का

साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का शब्द है। शब्द दे आरंभ दियां पंक्तियां हन, सोरठ ताम सुहावनी जां हर नाम टंडोले। राग भी सोरठ है। सोरठ गायन करने दा लाभ तद ही है जे गुरबाणी नू राग विच गा के उस प्रभु दे नाम दी प्राप्ति ले उस नू लभण दी कोशिश करे, उस दे नाम नू टंडोलण दी खेचल करे, तां ही सोरठ गायन करन दा अते शब्द पढ़न दा फायदा है। सो आओ सारे राग सोरठ विच इह शब्द पातशाही चौथी तंस गुरु रामदास साहब जी का उचारिया हुआ शब्द सुन करो।